0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट. यहाँ देखें चमकते खनिज, ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद. रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है. टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Melbourne Museum की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है. ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन. मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें. बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: अगला कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होगा. 1992 से चला आ रहा 2025 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ट एथनिक प्रोग्राम से सम्मानित भारतीय और ऑस्ट्रेलियन संस्कृतियों को जोड़ता मेलबर्न वासी भारतीय प्रवासियों द्वारा रचित दिलों दिमागों और मुद्दों को जोड़ता आपके साथ गाता गुनगुनाता हर सप्ताह आता आपका हिंदी का गीतांजलि कार्यक्रम एक बार फिर आ गया है. अधिक जानकारी के लिए www.3ZZZindian.org. आइए मिलते हैं आज के कार्यक्रम से.

गीतांजलि के सभी श्रोताओं को राकेश पल्लवी का प्यार भरा नमस्कार। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। दुनिया भर में रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए अगस्त महज एक महीना नहीं है, यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने, हमारे राष्ट्र को आकार देने वाले बलिदानों को श्रद्धांजलि देने और उन मूल्यों का जश्न मनाने का समय है जो हमें महाद्वीपों में एकजुट करते हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में 30 साल से रह रहे हो या पिछले महीने आए हो, तिरंगा आज भी आपको घर की याद दिलाता है।

0: तो इस बार शनिवार 15 अगस्त को हरियाली तीज भी पड़ रही है, बुधवार 26 अगस्त को ओणम का फेस्टिवल है, रक्षाबंधन या फिर श्रावणी पूर्णिमा वो शुक्रवार 28 अगस्त को पड़ रही है, कजरी तीज 31 अगस्त सोमवार को पड़ रही है। भारतीय मूल के श्रद्धालुओं को पता ही होगा कि सावन का महीना शुरू हो चुका है। अभी पिछले इसी हफ्ता जो सोमवार थी उसमें वो सावन का पहला सोमवार था। हमारा प्रश्न ये है, भारत का स्वतंत्रता दिवस आपके लिए क्या मायने रखता है? आप अपना संदेश indian.program@gmail.com में ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज गीतांजलि मेलबर्न इंडियन रेडियो 3ZZZ पर संदेश भेज सकते हैं। हम आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स। भारतीय दूतावास मेलबर्न द्वारा भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार 15 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे ध्वजारोहण फ्लैग होस्टिंग समारोह आयोजित किया जाएगा। स्थान है 344 सेंट किल्डा रोड मेलबर्न। सभी अतिथियों को सुबह 8:15 बजे पहुंचने का अनुरोध किया गया है। प्रवेश के लिए अपना सरकारी फोटो पहचान पत्र आईडी लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सुबह 10 बजे फेडरेशन स्क्वायर वहां पे सार्वजनिक स्वतंत्रता दिवस समारोह और ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन इंडियन फिल्म फेस्टिवल और विक्टोरियन गवर्नमेंट के सहयोग से हो रहा है। एकल विद्यालय मेलबर्न का फंड रेजिंग कार्यक्रम एकल रंगमंच कल रविवार 9 अगस्त को शाम 4 से 6:30 बजे तक कीज़बरू स्थित चैंडलर कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया जाएगा। दिस इवनिंग प्रॉमिसेस थिएटरकल परफॉर्मेंस, क्लासिकल डांस, म्यूजिक एंड डिनर। शास्त्रीय नृत्यों और संगीत के साथ साथ इस चैरिटी कार्यक्रम में हमारे गीतांजलि टीम के सदस्य विपिन गेंदार जी द्वारा लिखित और निर्देशित एक सुंदर नाटक भी प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया आप जाए और इस नए कार्य में अपना सहयोग दें। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं विपिन गेंदार जी को। फोन नंबर है 04326805072। फिर से मैं नंबर बोल देती हूँ 04326805072। तो ये एकल विद्यालय मेलबर्न का एक फंड रेजिंग इवेंट है। Massage, a journey of emotions and healing in Melbourne on Sunday 23rd August at 6 p.m. The show will take place at Boxall Town Hall and the tickets are available through drytickets.com.au. Bollywood ke diggaj Rakesh Bedi ek shandar aur hasyapurn Hindi theater monologue mein 24 kirdaron ko live prastut karenge. Aadhunik Bharat ke sabse vipul aur prabhavshali natkar विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित मसाज एक शानदार 2 अंकीय एकालाप है जिसने 350 से अधिक हाउसफुल प्रदर्शनों के साथ विश्व स्तर पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। स्थान है बॉक्सिल टाउन हॉल। हिंदी भाषा में ये कार्यक्रम होगा और 6 बजे से शुरू होगा।
1: ये रहमान के भरोसे बैठी है यार, याद ना स्थान में इलेक्शन में क्या हुआ था, उसे ड्रामे किए थे, फिर एसपी चौधरी असलम इसको उठा के ले गया था। वो तो मैं मिनटों सेकंडों में निकाल के ले आया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन के नतीजों में कितना गंदा असर पड़ा था याद है कि नहीं? तो एक बार इलेक्शन हो जाए, हम जीत जाए, अरे उसके बाद बाबू डकैत के अरशद पप्पू के भी पूरे खानदान को हलाल करके नंगा करेगा ना ये।
2: अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू डकैत को लकवा मार गया था।
1: कितने साल हो गए तुम्हारे सस्पेंशन को?
3: 7 साल।
1: 7 साल? तभी मैं कहूं कि इन 7 सालों में लियारी की ऐसी हालत कैसे हो गई?
3: सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे।
1: मैंने? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता ना, ना सच्ची जवानी के जोश खरोश में करी होगी कोई गलती तूने।
4: अब वो कुछ पैसे चाहिए थे।
1: क्यों?
4: आज 3 तारीख है, कोचिंग की फीस भरनी है।
1: पर अम्मी ने कहा ना तुम्हारी कोचिंग वोचिंग सब बंद।
4: आप फीस दे रहे या मैं खुद कुछ इंतजाम करूं?
1: चंबा दूंगा बुठे हाथ का घुमा के, तेरे मुंह पे तो सारे इंतजाम तेरे भरा जाएंगे। अपनी अम्मी पे गई लगती है बिल्कुल, पैसे पेड़ों पे उगते हैं। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, कभी लिपस्टिक ले दो, कभी सैंडल ले दो, दफा हो जाए यहाँ से।
5: असलम वापस आ गया।
6: कौन? आतिफ असलम? वो कहाँ गया था?
2: अच्छा, एसपी चौधरी असलम। अरे यार, ये जरवारी साहब को ना कब्रों में से गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक है। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। बचा यार तू मेरा।
7: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राकेश बेदी और मैं आज आया हूँ आपको इनवाइट करने, आमंत्रित करने मेरे एक प्ले के लिए जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और जिसका नाम है मसाज। प्लीज डोंट मिस इट बिकॉज इट्स अ ट्रू मसाज फॉर ऑल योर इमोशंस एंड आई विल गिव यू अ वेरी रीजुविनेटिंग मसाज। नमस्कार।

0: include Hindi as an option in Australia's Census 2026? जी हाँ, ये शीर्षक है change.org में एक अभी नया पिटिशन लॉन्च किया गया है. ये हिंदी को सेंसस में एक भाषा के रूप में शामिल करने के लिए ये एक पिटिशन है. आइए हम बातचीत करते हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा जी के साथ. नमस्कार डॉक्टर शर्मा जी, आप आईआईटी के पूर्व छात्र और मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ऑस्ट्रेलिया में हिंदी और कविता को बढ़ावा देने के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया है और आप मेलबर्न में हर दूसरे महीने साहित्य संध्या का आयोजन करके अपने एक जीवन साहित्यिक समुदाय का निर्माण किया है और आप हिंदी शिक्षा के माध्यम से हिंदी शिक्षा के प्रति भी आपका काफी गहरा लगाव है. तो पर आज हम बात करेंगे हिंदी एज अ लैंग्वेज के बारे में इस ऑस्ट्रेलिया के भूमि में कि यहाँ पे हिंदी का क्या महत्व है और अभी सेंसस होने वाला है. आप हमारे सभी श्रोताओं को कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं. सबसे पहले नमस्कार, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अपने कार्यक्रम से जोड़ा. सबसे पहले तो आपके 3ZZZ ये जो कार्यक्रम है, रेडियो है, उसके सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार कि वो मुझे सुन रहे हैं. लगभग आपने बहुत अच्छा समय चुना है कि जब आप हिंदी की दिशा और दशा दोनों के बारे में बात कर रहे हैं. जैसा कि आपने बताया, मैं यहाँ हिंदी शिक्षा संघ का अध्यक्ष हूँ और लगभग 25 साल से मैं साहित्य संध्या के नाम से हिंदी गोष्ठी, कविता गोष्ठी का आयोजन करता हूँ हर दूसरे महीने. लेकिन अब जो है मेलबर्न वेस्ट में भी जो शुरू कर दिया, तो कह सकते हैं कि आप हर माह करता हूँ.
0: अच्छा.
1: तो ये हाँ, तो ये तो मेरी पृष्ठभूमि है कि मैं हिंदी कविता के लिए समर्पित हूँ और कविता के माध्यम से मैं हिंदी का प्रचार प्रसार में जो भी मेरे से बन पड़ता है वो योगदान करता हूँ.
0: जी,
1: तो आपने जो कहा है, बहुत अच्छा बात कही कि सेंसस का टाइम चल रहा है, जनगणना का टाइम चल रहा है. तो जनगणना का और हिंदी से क्या जुड़ाव है, क्या उसका महत्व है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. सेंसस जब भी होती है, जनगणना जब भी होती है, तो उसमें जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं लोगों के माध्यम से, और उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से सरकार आने वाले समय की प्लानिंग करती है, योजनाएं बनाती है कि किस तरह से रिसोर्सेस या संसाधन जो है उनको बांटा जाए.
0: जी.
1: जैसे भाषा भी उनमें से एक विषय है कि भाषाएं, कौन कितनी भाषा क्या बोलता है, तो उस भाषा के हिसाब से स्कूल, टीचर, बिल्डिंग, ये सबका जो है एलोकेट किए जाए वो रिसोर्सेस या संसाधन. तो उसमें ये होता है कि आबादी के हिसाब से नहीं, बल्कि कितने लोग बोलते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं कि 2021 में जो जनगणना हुई थी, उसके आधार पर अभी जो आप फॉर्म देख रहे होंगे, सेंसस फॉर्म, उसमें जो है 6 भाषाएं जो है अंकित की गई, अंग्रेजी के अलावा. तो जैसे मैंड्रीन है उसमें, स्पेनिश है, या पंजाबी है, या ग्रीक है. तो ये जो भाषाएं हैं, मतलब कहने का ये है कि इस समय जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी जनसंख्या जो है लगभग 9,16,000 2021 में थी, लेकिन आज वो लगभग 1.1 से 1.2 मिलियन, मतलब 11 से 12 लाख लोग हैं. तो जो भाषा 11 और 12 लाख लोग प्रयोग कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, वो पिछड़ रही है और वो इग्नोर हो रही है. तो ये हमारा जो अभी का जो हमारा अभियान चल रहा है, अगर आप लोगों ने देखा हो कि हमने एक सर्वे जो है और पिटीशन जो है बनाया है कि आप लोग भेजें, ताकि जिस अनुपात में हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं उसी अनुपात में हम फॉर्म में भी, जो सेंसस फॉर्म है उसमें लिखे, ताकि सरकार तक सही संख्या पहुंच सके और उसी के अनुसार वो हमको संसाधन उपलब्ध कराएं.
0: जी.
1: तो ये जो हमारा अभियान इस समय चल रहा है क्योंकि सेंसस का टाइम है, इसलिए ये कुछ कोइंसिडेंस कह लीजिए कि इस समय जो है इसकी उपयोगिता ज्यादा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तो अभी क्या है कि लोग जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक से लेके छह तक, जिसमें पांचवी जो है पंजाबी है और छठी जो है ग्रीक भाषा है
0: जी।
1: पंजाबी जो है लगभग 2,39,000 लोग जो है पंजाबी बोलते हैं, ये लिखा है लोगों ने, जबकि हिंदी लिखने वालों बोलने वालों की संख्या 1,96,000 है। तो ये आंकड़े लिखे 2021 के हिसाब से, जबकि सच बात ये है कि आप जो भी भाषा लिखें कि आप घर पे क्या बोलते हैं वो आप प्योर भाषा नहीं बोलते हैं। आप पंजाबी बोलते हैं तो हिंदी भी बोलते हैं, उसके साथ में अंग्रेजी भी बोलते हैं। आप कहें कोंकणी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, मलयाली बोलते हैं, या आप भोजपुरी बोलते हैं, आप कोई भी भाषा लिखें कि घर पे बोलते तो आप प्योर नहीं बोलते। उन सब में एक जोड़ने वाली कड़ी है, वो है हिंदी। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जो है कड़ियां हैं, चूंकि अंग्रेजी तो हमारी पेट की भाषा है, यहाँ पेट पालने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारे देश की, भारत की अगर एक भाषा कही जाए तो भारत की जो 22 भाषाएं हैं, जो चिन्हित भाषाएं सरकार के अप्रूव्ड है, वो हम 22 भाषाएं तो नहीं हो सकती राष्ट्रीय भाषाएं। और हम यहाँ राष्ट्रीय, कुछ लोगों को अगर गलत फहमी हो, हम यहाँ ये नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारतीय भाषा जो है राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, नहीं, हम चाहते हैं कि हिंदी जो है उसको संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए। तो आप जब ये देखते हैं कि आपने घर पे तो लिखा है कि हम गुजराती बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ आप कॉन्सुलेट में जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो 40,000 लोग उनको हिंदी में सुनने जाते हैं, आप फिल्में देखते हैं तो हिंदी में देखते हैं, आप क्रिकेट के मैदान में जाते हैं तो वहाँ हिंदी सुनाई देती है। तो हिंदी तो जोड़ती ही है, सब भाषाओं को जोड़ती है, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। और चूंकि जोड़ती है तो इसका मतलब घर पे ही नहीं है, मतलब आप अंग्रेजी के अलावा जो कौन सी भाषाएं बोलते हैं, घर पर नहीं, घर पर और अपने समाज में। तो वो जो घर पर आप अगर कोंकणी बोलते हैं तो समाज में आप हिंदी भी बोलते हैं और कोंकणी भी शायद बोलते होंगे। अगर यहाँ पे 2000 लोग होंगे तो कोंकणी बोलने वाले, तो 2000 के साथ आप कोंकणी भी बोल रहे हैं लेकिन साथ में हिंदी भी बोल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कभी कोई मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई रेडियो प्रोग्राम आ रहा है। तो ये सब जो है, तो इनका ये होना चाहिए। और उसके हिसाब से जो सबसे पहली आवश्यकता है इस समय, वो ये हम सभी लोगों से साहित्य संध्या और हिंदी शिक्षा संघ की तरफ से, और हिंदी की अनेक संस्थाएं जो है, जिस तरीके से हिंदी निकेतन है, उन सबका यही कहना है कि अधिक से अधिक लोग हिंदी ऑप्शन लिखें सेंसस फॉर्म में। अब सवाल यह है कि हिंदी जो है लोग क्यों नहीं लिखते हैं, मतलब आप ये बताइए कि जो 2,39,000 पंजाबी लोग हैं, समझे, वो मेरा ख्याल है कैस को शायद ही कोई ऐसा पंजाबी बोलने वाला व्यक्ति हो जो हिंदी ना बोलता हो, जिसको हिंदी ना आती हो, अगर उनको भी 1,96,000 जो हम भारतीय हिंदी भाषी लोग हैं उनके साथ जोड़ दें तो 4,00,000 हो गई, तो हमारी संख्या शायद उनसे भी ज्यादा हो जाएगी मैंड्रिन बोलने वालों से, तो शायद पहली हमारी भाषा होगी हिंदी जो विश्व की कोई अंग्रेजी के अलावा किन्हीं अन्य भाषाओं से ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कही जाएगी।
0: जी।
1: और अगर हम ये बात एस्टेब्लिश कर दें कि भाई हिंदी जो है इतनी आवश्यक है, हम भारतीय मूल के लोगों की एक संपर्क भाषा है, तो उसके हिसाब से सरकार जो वो आंकड़े लेगी और उसी हिसाब से स्कूल सुविधाएं। अब आप देखेंगे कि कई जगह कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो उसमें वियतनामी में लिखा हुआ है, ग्रीक में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी का कहीं पता नहीं। अक्सर कर लोग कहते हैं कि साहब अब आप लोग खुद ही नहीं हिंदी यूज करते तो हम क्या करें। तो एक इसकी भी आवश्यकता है कि आप जो है हिंदी का प्रयोग करें ताकि आपकी उपस्थिति इस समाज में दर्ज हो। ये तो बहुसंस्कृतिक राज्य है, देश है, तो इसमें तो हर भाषा को वेलकम किया जाता है, तो आपको अपनी भाषा प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो ये तो रही एक बात जो मैं कहता हूं। तो अब सवाल यह है कि

0: लोग लिखना नहीं चाहते हैं, या लिखने का प्रोविजन नहीं है, या लोग लिखने में हिचकिचाते हैं। तीन चीजें हो सकती हैं।
1: जी।
0: अब जहां लिखना है कि पंजाबी, तो लोगों ने साफ लिख दिया कि वो घर पे अगर पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी लिखनी चाहिए, गुजराती बोलते हैं तो गुजराती लिखनी चाहिए, मराठी बोलते हैं तो मराठी लिखनी चाहिए। लेकिन वो जो हिंदी एक भाषा है जो सबको जोड़ती है, वो कहाँ गायब हो गई? ये तो चिराग तरह अंधेरा वाली बात हो गई।
1: जी, आपने बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे से समझाया, क्योंकि वही है, सबके मन में वही प्रश्न होगा कि नहीं, घर में तो हम हिंदी में नहीं बात करते हैं, मतलब हमारी मातृभाषा, या जो भी मातृभाषा बोलेंगे ना, कि आप गुजरात से हैं तो गुजराती में बात कर रहे हैं, या महाराष्ट्र से हैं तो मराठी में बात कर रहे हैं। तो पर आपने जो ये संपर्क भाषा बोली, लिंक लैंग्वेज, जो कि अभी अनुपस्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सबको समझाने के लिए कि ये डिफरेंट है।
0: ये पल्लवी जी, एक बात मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि आप अगर वहां चले जाइए मिडिल ईस्ट में, दुबई में चले जाइए, दुबई में मतलब वो किसी भी आदमी से, चलते आदमी से सड़क पे बात करिए तो वो हिंदुस्तानी में बात करता है, हिंदी में बात करता है। मैं खुद गया तो मैं सोच रहा था कि मैं वहां अंग्रेजी बोला, मैंने वेयर डज दिस बस गो टू अबू धाबी, कहता साहब सामने तो लिखा हुआ है, तो वो मैं अंग्रेजी में पूछ रहा, वो हिंदी में मुझे जवाब दे रहा है। तो कहीं पर भी ये शायद उनके कानूनी तौर पे कहीं नहीं लिखा कि यहाँ की हिंदुस्तानी भाषा यहाँ की जो है अधिकृत भाषा है, लेकिन बोली जाती है। तो वही कारण, उसी प्रकार का भविष्य मुझे नजर आता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो दिन चले गए जब सिर्फ स्कॉलरशिप पे लोग पीएचडी करने आते थे, डॉक्टर बनने आते थे, इंजीनियर बनने आते हैं। आज तो कोई जो है हेल्थ इंडस्ट्री में भी आते हैं, कोई लोग जो है हेयर कट के स्पेशलिस्ट बन के आते हैं, कोई कारपेंटर बन के आते हैं। तो सबको जो है, जब बहुत तरीके के लोग मिलते हैं तो सबका जी करता है कि मैं अपनी कोई कॉमन लैंग्वेज बोलूं, और वो हिंदी ही हो सकती है। तो मैं फिर अपने उस पे मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो सरकार ने, एक तो वो लोग जो लिखना नहीं चाहते, वो हिंदी वाले भी हैं, वो भी अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, अरे यार क्या बवाल में क्या पढ़ना, समझे। दूसरे लोग वो हैं कि जो है कि अब हिंदी लिखे कि अंग्रेजी कि हम अपनी कोंकणी लिखे, चाहे थोड़ी बहुत भी बोलते, घर में नहीं भी बोलते, अंग्रेजी भी बोलते तो भी लिख दो, चलो कोंकणी लिख दो। जबकि हिंदी कोंकणी में भी घुली मिली है, जिस तरह से अंग्रेजी के शब्द आते हैं उसी तरीके से हिंदी के भी आते हैं। तो सरकार को ये लिखना कि, पहली बात तो उन पांच भाषाएं, छह भाषाएं लिखने के बाद में उन्होंने लिख दिया हिंदी को अन्य भाषाओं में से लिखी है, भाई अन्य भाषा लिखने की क्या जरूरत है, जबकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ 1 मिलियन आबादी है, और 1 मिलियन आबादी में जब पंजाबी लोग ही 2,39,000 बोल रहे हैं जिनको हिंदी अच्छी तरह से आती है, अगर वो और 2,76,000 वो जोड़ दिए जाए तो आबादी इतनी हो जाती, हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है सबसे ऊपर हो जाती। बाकी को तो छोड़ दीजिए कि जो लोग मराठी और गुजराती बोलते हो उनको भी शामिल कर लो, तब तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि हिंदी अंग्रेजी के बाद में पहली ऐसी भाषा होगी जो सबसे ज्यादा बोली जाती है घर के बाहर। तो सरकार को जो डिजाइन फॉर्म जो है, सेंसस फॉर्म, इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि उसमें लिखे कि आप अंग्रेजी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं घर पर या अपने समाज में बोलते हैं।
1: जी,
0: ताकि लोग लिखेंगे मैं पंजाबी भी लिखता हूँ, गर्व से लिखेंगे मैं पंजाबी भी बोलता हूँ, और फिर कौन सी भाषा लिखोगे आप, हरियाणवी तो लिखोगे नहीं, यही कहोगे मैं हिंदी भी बोलता हूँ। तो हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो हिंदी के लिए रिसोर्सेज एलोकेट होने चाहिए, वो उसी अनुपात में होने चाहिए जिस अनुपात में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। पर इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि जैसे मोदी जी आए, 40,000 लोग जो है वो सब हिंदी में उनका भाषण सुनने गए। हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जो 1,96,000 जो मैं संख्या बताता हूँ भारतीयों की 2021 में जो रिकॉर्ड की गई है, उसमें से भी तो काफी लोग फिजी के होंगे, कुछ लोग मॉरिशस के होंगे, कोई त्रिनिदाद के होंगे, वो जो हिंदी बोलते हैं। तो हम हिंदी बोलने वाले ऑफिशियली कितने लोग हैं भारत के, और जबकि सड़कों पे दिखाई दे रही कि हाँ हिंदी है, चारों तरफ दिखाई दे रही। आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहां भी हिंदी में आपको बोलेंगे तड़का दाल, तो तड़का दाल आपको मिलेगी, सब जानते हैं, समझे। आप बाल कटाने जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, आधे डॉक्टर जो है हिंदी बोलते, लिखते हैं कि हम हिंदी जो चाइनीज और कंटोनीज यहाँ पे बोली जाती है, तो हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इसका दो कारण है, एक तो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जिसके लिए हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सब लोगों से कि इस सेंसस में ज्यादा से ज्यादा लोग लिखिए कि हमारी हिंदी जो है, हम मैं जानता हूँ अगर आप बहुत ज्यादा अपनी भाषा यूज तो बात अलग है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि कम से कम हिंदी को वो सम्मान मिले, क्योंकि वही हिंदी आप घर के बाहर जाकर फंक्शंस में लोगों से मिलते हैं तो बोलते हैं, जितनी भी बोलते हैं वो बात अलग। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा हमारा जो उद्देश्य है इस समय, जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है एक तरीके का, वो ये है कि हम सरकार के ऊपर दबाव डालें कि सरकार जो है इस सेंसस फॉर्म का डिजाइन जो है वो चेंज करें, और ये लिखने की जगह कि आप घर पर कौन सी भाषा बोलते हैं अंग्रेजी के अलावा, उसके लिखे कि आप कौन सी भाषाएं बोलते हैं, और अगर ये कौन सी ज्यादा नहीं लिखते हैं तो कम से कम वो कौन सी दो भाषाएं हैं जो आप अंग्रेजी के अलावा भी बोलते हैं अपने समाज में या अपने घर पर। इसका एक और भी कारण है कि दो भाषाएं क्यों, एक क्यों नहीं। आप बताइए कि अगर हम पति और पत्नी, एक कोई बंगाल से है और एक कोई गुजरात से है, तो अब ये बताइए कि या तो पति हावी हो जाए पत्नी के ऊपर, या पत्नी पति के ऊपर हावी हो जाए, या कहते हैं तुम्हारी जो मर्जी लिखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता
1: जी, या तो वो इंग्लिश ही लिख देते हैं, क्योंकि
0: कोई एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने वाली या ओवर पावर करने की क्यों जरूरत होनी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि दोनों को बराबर का हक देते, समझे, कि वो कौन सी आप दो भाषाएं हैं जो घर पर बोलते हैं अंग्रेजी के अलावा, तो उससे भी जो है हिंदी छुपी नहीं रह जाएगी, हिंदी को शर्माना नहीं पड़ेगा, हिंदी अपना स्थान जो है अपने आप पालेगी। तो ये तो हमको मानना पड़ेगा कि हिंदी अदर लैंग्वेजेस का तो दर्जा नहीं पाती है, उससे कहीं उसका ऊंचा दर्जा है, और उससे कहीं उसके आपकी आइडेंटिटी है, आप इसको पहचाने और इसमें हम सब लोगों का साथ दें। पर सबसे बड़ी पहली जरूरत यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी उस पे लिखें, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोग लिखें, और इस अभियान से जितने लोग पिटीशन में साइन करेंगे, आने वाले 2031 में हम उतना ही सरकार के ऊपर दबाव डाल सकेंगे कि वो अपने सेंसस फॉर्म को सुधारें, ताकि जो इससे दो चीजें हैं, सरकार का भी उद्देश्य है कि जो जिस अनुपात में लोग हैं उनको उस अनुपात में उस भाषा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो हिंदी को कहाँ मिल पा रहा है, सरकार का भी उद्देश्य नहीं पूरा हो रहा
1: जी,
0: क्योंकि जो जिनको एक्चुअल चाहिए उनको हेल्प कहाँ पहुंच पा रही है, है? और जो हिंदी वाले हैं, हिंदी के समर्थक हैं, जो अपने देश की के पहचान बनाना चाहते हैं, उनको भी कोई लाभ नहीं हो रहा। तो यह है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए सर, ये तभी पॉसिबल है। आप पहले तो अपनी संख्या लिखें कि हम भाषा घर पर बोलते हैं, और दूसरा आप ये हमारे साथ रहें, पिटीशन पे साइन करें, ताकि आगे चलकर हम हिंदी को भारत की उन गिनी चुनी भाषाओं में से बना सकें जो उसका स्थान ये डिजर्व करती है, जो उसको स्थान मिलना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है सभी से।
1: डॉक्टर शर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे श्रोताओं से बहुत एक गंभीर बात कही, बहुत जरूरी बात कही। आशा है कि हमारे श्रोतागण इसके बारे में विचार करेंगे और सही निर्णय लेंगे।
0: बहुत अच्छा है, बहुत बहुत आभार श्रोताओं का और ट्रिपल सेट रेडियो का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बार इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 13 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा। इस बार अवार्ड्स नाइट की रौनक बनने के लिए आ रहे हैं

0: रेखा रानी मुखर्जी, ऋषभ शेट्टी, पंकज त्रिपाठी.
1: इंडिपेंडेंस इन 1947. बट वी गेट इंडिपेंडेंस इन 1947. व्हाई यू सो लेट? क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर. ट्रिपल बीए, डबल एमए, वैद्य विशारद, साहित्याचार्य, संगीताचार्य, अर्थशास्त्री, सारी डिग्रियां हैं मेरे पास.
2: हम ही मर गए. म्यूजिक भूल तो नहीं गए हमें.
1: देखो बेटा भिंडर, तुम्हें मार नहीं रहे हैं, हम मुक्त कर रहे हैं.
3: नमस्कार, मैं पंकज हूँ और मैं आ रहा हूँ इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में. तो मेलबर्न आइए, 13 तारीख को आइए, फिल्म अवार्ड नाइट में मिलते हैं और इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट करते हैं वहाँ. थैंक यू सो मच, सी यू इन मेलबर्न.
0: दिल के सलमान, मानुषी चिल्लर, तनिष्ठा चैटर्जी,
4: आपके मन में क्या था? वो जहाँ पहुँचना था वो मंजिल क्या थी?
5: I just wanted to, सबसे जो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि एक्टिंग जो ये कहते हैं लोग, उसको कैसे, उसके गहराई में कैसे पहुंचे. मैं तो कर सकता हूं, करता तो हूं, लेकिन एक एक्टर ऐसा है कि दो एक्टर काम कर रहे हैं सीन कैमरा के सामने, मुझे मेरा जो आंखें, मेरी आंखें उसके ऊपर क्यों जाता है, इसके ऊपर क्यों नहीं जाता है. सो दोनों अच्छे हैं, बेहतर है, दोनों बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन एक जना को देखता हूँ दूसरी जना को
4: नहीं. दूसरे पर हावी हो जाता है कभी.
5: हाँ, क्या बात है उसमें कि कैसे आप सचमुच अपने पर्सनालिटीज को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो कि आप लोग पहचान ना पाए आपको. तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तभी आता है मुझे जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं. ऐसा दो चार बार, काफी बार हुआ है मेरे साथ. तो हम दुबई में देखे और एक डायरेक्टर, ब्रिटिश डायरेक्टर, उन्होंने मेरे साथ बैठ के देखे और उनको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था. और जब बाहर हम आए तो मुझे पूछा आप क्यों आए यहाँ पर. मैंने कहा एक मेरे फिल्म है इस वजह से. उन्होंने कौन सी फिल्म? मैंने कहा लाइफ ऑफ पाई. ओह अच्छा, यू आर इन द प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन टीम. आई सेड नो, आई एक्टेड इन दिस. यू एक्ट

0: पासपोर्ट बनाना पड़ता है।
1: बनाना पड़ता है। चलो कल से मैं वीजा का चक्कर शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा है क्योंकि तुम्हें दाम से पहले जाना है।
2: और हम?
1: हम बाद में जाएंगे।
2: Why?
3: आदिल हुसैन और बहुत सारे दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, जिसमें कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अब की बार। तो वहां पे जलसा लगेगा बॉलीवुड के, और बहुत सारे बियॉन्ड बॉलीवुड ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की मूवीज भी आएंगी। तो क्या आप इस साल IFFM इवेंट्स पे सम्मिलित हो रहे हैं? 13 अगस्त अवार्ड्स नाइट की रात है, तो उस रात ढेर सारे एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ आपका मनोरंजन करने के लिए आ रही हैं कोलकाता की रॉक स्टार निकिता गांधी। उन्होंने AR रहमान, बादशाह, अरिजीत सिंह, शाश्वत सिंह और बहुत सारे जो हमारे बॉलीवुड में सिंगर्स हैं और म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम किया है। तो यदि आप उनको लाइव सुनना चाहते हैं तो अवार्ड्स नाइट में आना ना भूलें। 14 अगस्त को फेस्टिवल ऑफिशियली शुरू होगा एक तमिल फिल्म से। फिल्म का नाम है मेंबर्स ऑफ द प्रॉब्लमेटिक फैमिली। एक्सपीरियंस द टाइमलेस मैजिक ऑफ उमराव जान एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026। जॉइन फॉर अ स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ मुजफ्फर अलीज आइकॉनिक मास्टरपीस, फॉलोड बाय अ स्पेशल अपीयरेंस बाय रेखा एंड मुजफ्फर अली। The event is on 14th of August at 8:30 PM in Crown Village.
4: उमराव जान, हमने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना।
5: उमराव जान की तारीफ करना तो सूरज को चिराग दिखाना है। ऐसी हसीन के परिस्तान की परी जहर खा ले, शायरा ऐसी के उस्ताद कान पकड़े।

0: क्या कहा नवाब साहब ने?
1: तड़प गए, गिड़गिड़ाने लगे कि किसी सूरत उमराव जान से एक बार मुलाकात करवा दीजिए।
2: दो महीने की तनख्वाह पेशगी देने को तैयार हूँ।
3: आपको शायद मालूम नहीं, सुल्तान बहक रहे हैं, सुल्तान कोठों पर जाने लगे हैं।
0: चाहे कोई मरे या जिए, आपको तो मुजरे से मतलब।
4: पाला पोसा हमने, जवान किया हमने, और कमाने लगी तो चूल्हा अलग कर लिया।
0: कुछ भी करके मुझे यहां से ले चलिए, अब मेरे यहां दम घुटता है।
2: हम सब किस्मत के मारे हैं।
0: किस्मत के नहीं,

0: अगर उस दिन वो लोग तुम्हें मेरी जगह ले जाते तो तुम्हें मिलता वो कोठा और मुझे ये कोठी।
1: तवायफों के कोठों की रौनक के पीछे उनकी जिंदगी का एक गमगीन खंडहर होता है, जिसके मलबे में तवायफ बनने की दर्दनाक दास्ता दबी होती है। मिर्जा हादी रुस्वा की उमराव जान अदा ऐसी ही एक शोक दिलकश तवायफ की कहानी है, जिसके घुंघरू की खनक के पीछे दबा है उसका बदनसीब अतीत। ये कहानी है एक बच्ची अमीरन की, जिसे दिलावर खान नाम के अपराधी ने अपहरण कर लिया और उसे लखनऊ में एक कोठे पर बेच दिया। इस तरह मासूम अमीरन तवायफ उमराव जान बन गई। लेकिन जैसे ससुराल पहुंची नई नवेली दुल्हन को यह पता होता है कि मरने तक जिंदगी यही बितानी है, तो वो अपने घर को न याद करके अपने वर्तमान में जीने लगती है। ठीक वैसे ही अमीरन से उमराव बनी मासूम बच्ची ने जल्द ही दिल को कठोर कर खुद को माहौल के मुनासिब बनाने लगी और जल्द ही लखनऊ के कोठे की शान बन गई। उससे मोहब्बत करने वाले मिले और वह भी मिले जिसे उमराव ने चाहा। उमराव जान का किस्सा सच

0: सच्चा है या झूठा इस पर अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है, इसलिए उमराव जितनी हादी मिर्जा रुस्वा की कल्पना हो सकती है उतनी हकीकत भी। किताब तो कहती है कि रुस्वा साहब उमराव जान से मिले थे और उमराव ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई थी। रुस्वा साहब ने वही लिखा जो उमराव से सुना, लेकिन जो भी हो उमराव जान अदा उस समय की सबसे बड़ी साहित्यिक घटना थी जिसमें गहरी सामाजिक चेतना के साथ स्त्री विमर्श भी था। आगे चल के इससे पहले मनोवैज्ञानिक उपन्यास होने की प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। Indian Film Festival of Melbourne will close with a bang with full plate.
1: मेरे को ना 2 महीने के लिए गांव जाने का है, मेरा काम संभालने के लिए चाहिए कोई।
2: मेरे को रखेंगे वो,
1: भाग भाग के रखेंगे तेरे को, तेरे जैसा अब चिखाना कोई नहीं बनाता।
3: मोमेडन सुनते 3 फैमिली तुझसे तो दरी रिजेक्ट कर दिया तेरे को।
2: कि मेरे हिजाब से क्या प्रॉब्लम है उनको?
4: मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली नेक्स्ट मंथ ना मेरी मदर इन लॉ फैमिली आएगी, उनको नहीं जमेगा।
2: देख शोएब के अब्बू को पता चलेगा ना तो दोजख की आग में जलाते हुए मेरे को।
5: मम्मी का सिखाया सब भूल गई क्या? क्या मरीजों का खाना बनाना शुरू कर दिया यार।
2: ये मत डालो, वो मत डालो, अरे कुछ डालेंगे नहीं तो जायका कैसा आएगा? फिर बोलोगे क्या बनाया?
1: अमृत खाना बनाने में एकदम उस्ताद है दीदी, और बिरयानी तो एकदम मस्त बनाती है।
6: अरे नहीं नहीं, हम वीगन है, समझती हो?
5: हाँ वीगन है हम,
2: इज्जत वाला काम है, और मेरे को हिजाब निकालने को भी नहीं बोलेंगे। दीदी इसको कैसे बनाने का है?
6: जैसे आपने घर पे बनाते हो।
2: हम लोग ये अंग्रेजी सब्जियाँ नहीं खाते।
5: तेरे को और तेरे बेटे को ना हुज्जत करने की बहुत आदत पड़ गई है, साला इसीलिए लेडीज लोग को घर में बिठा के रखते हैं।
2: ये ओपन मैरिज मालूम तुमने उनको?
1: एक दो बार सुनी हूँ मैं, बट मालूम नहीं क्या रिवाज होता है।
7: अमरीन अगले हफ्ते से तुम वीगन कुकिंग क्लासेस के लिए जाओगे, ओके?
8: 4 पैसे क्या कमा लिए, मैडम की नाक 7वें आसमान पे पहुंच गई है।
5: तुम तो घर के आदमी हो, अमरीन भी ये सब मजबूरी में कर रही है।
9: आपने एक काम करो, नुक्कड़ पे ना एक फ्लेक्स बोर्ड लगवा दो और लिख दो ऐसा बड़ा बड़ा कि अमरीन खाना बनाने बाहर जाती है।
8: बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को, हां बहुत चर्बी चढ़ गई,
0: जवान हो गया, दिखता नहीं है तुमको। डायरेक्टेड बाय तनिष्ठा चटर्जी, शी इज द क्वीन ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा एंड स्टेलर परफॉर्मेंसेस बाय कीर्ति कुल्हारी एंड शादी हाशमी।
5: जान है हमारी,
10: जान का कोई नाम भी तो होगा अभी भैया।
5: तब सुन,

हमारे जाने का समय करीब आ गया है, तो आपसे विदा लेते हुए और फिर से मिलने की आशा के साथ शुभ रात्रि।